0: क्लास तुम कुफाफ ही।
1: आनक एच आर मथुरी कदमान सम्मान अरे क्यों मास चिंता न क्यों दान दात चिमान रुचुरुच फैने ने फटुटक न तंबरी चांचे ओ अरे फसक पुटक नुनिया बेन याफ़ज़ान कसावले ना बेन ताना रामजुन गुन्ना आज तो मने चनाओ फ़ज़मुबनाओ कुर जोवे देश के तुझो सारा काजन रियमंट रचफ़ंतो कुर ज़ैले निफ़सेला नज़ायद निफ़ियाना को फ़ेन ज़ावा मिफ़मा मिला चाय ताक़तुर एफ़न्ताना मार जो सुफ़न्याफ़ नाम नौज़ान ज़ाम फ़ुमारे ने मिर्चेर चोंट साइन सिम्तेत क्या न्यासा मनुक निमस्वां उसका फ़्तिज़ानी